0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था। रिलायबल लाइफ सदैव भरी लाए।
1: अहिले बिहानको 7 बजे।

0: हजुरको रेडियो 102.1 MHz।
1: रंग बहार रंग बहार
2: वर्ज संगे उपहारे उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
1: वर्ज पेन्सले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्।
2: साथै 65 इन्च को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरू पनि।
1: घर रंगाऊ खुशी बढाऊ उपहार जित्ने अवसर पाऊ। वर्ज पेन्स

0: सारे काम काज करूं, तेरे गुस्से लेके इको का मसाज करूं, तेरा झूम का जो खोया गलती है तेरी और थाने जाके एफआईआर में लॉन्च करूं। जानती है कि मैं तुझे पे चला हूं, ये जानती है तेरी आत्मा को मिलती है शांति है, मुझे ऐसे काम पे लगा के बस ढूंढता रहूं मैं तेरा झूम का।
1: अरे बहन के इतना बेबर कहना, तेज हवा से बच के रहना, गिर जाए तो फिर ना कहना झुमका गिरा रे।
2: झुमका

स्वर टंकामाया श्रेष्ठ सुमी श्रेष्ठ र कविता सेन्चुरी को सुमधुर आवाज में शब्द संगीत नावा फिंजु पाखिन इस चीज में केवल नाच्ने रमाउने मात्र होइन नारी का कथा र भावनालाई पनि महसुस गरौं।